जे ताई अपनी पुत्री की शादी करके मिट्टी धोने लगता है। गुरु महाराज साहब कह लगे मैं फिर कुछ दीन दुनिया का छकर दिता है, तुम की सुविधा है, ये मिट्टी नहीं है, फाड़े से मिट्टी पवेगी, ये तो कुल दुनिया के सिर ताज हो गए। ये वाह गुरु महाराज साहब जी किते क्योंकि वो ये अपने आप में वही कुल अहंकार करने वाले शर्मिंदे होके वापस हो गए। सतगुरु रामदास महाराज साहब जी की इस पहल में वेख के महाराज जी ने फिर सिखा सिखी पुत्री सारे ने ताई को करके सुखे पातशाह जी ने पुत्री पापी जवाई सकी अगो पिछो टोल मिठा लाहे सबने के मनोगमान पुत्रा की परख की। बाबे मोहरी के अंदर एक ख्याल सी कि मैं भी गुरु साहब का आज्ञाकार हाँ, पर एक दिन संगत विच इन्होंने वचन किए कि महाराज साहब जी कदे आपके चरणा च भेटा नहीं कोई माया जी कराउंदे, असी कदे लख टका एक जगह कदे नहीं वेखिया। क्योंकि महाराज साहब अंतरयामी ने पुत्र की कामना जान के संगतां नूं किया कि भाई पांच पांच पैसे संगतां अज सारियां मत्था टेको। जब संगतां नूं पांच पांच पैसे मत्था टेके तो भाई मोहरी नूं कहा भाई मोहरी गहणो ये लख टका हो गया कि नहीं हिसाब करके वेख। भाई मोहरी की गर्मी भी उसी गई लगा मथे से भी मुड़का आवे हथा में भी मुड़का आवे शरीर में भी मुड़का आवे पसीने आने हुआ कदे हथ न पूजे पसीने मथे तो कदे इस तरह गिंदा गिंदा भाई बड़ा खुश हो गया माया नु वेख के। उस वे महाराज कह लगे वेख के पुत्र इस बिच चित लाया आपके चेहरे को शीशे वेख काला हो गया कि नहीं इवें मन नु काला कर दूंगी पदार्थ मोह नहीं करना चाहिए। क्यों कह के पुत्र का मोह छिड़ाता सी सच्चे पातशाह ने क्यों पुत्र की परख की भांति भतीजिया की परख की सौन मन के ताई महाराज साहब जी ने जिस वक्त हरिपुर की रियास में कार की लोड़ सी गोइंदवाल साहब के आवाज करने वास्ते इन्हू भेजन लगे है। यदि माता ने कहा महाराज मेरे पुत्र डाकनियां प्रेतनियां खा जाएगियां। महाराज कह लगे नहीं ये राखे है गुरु साहब जी अपने हद्दा रुमान सुरजी जी दिता सौन मल जी जाके लैके जब गए हरिपुर का राजे का पुत्र उसे दिन पुजी गए जी तुम्हें पूजे उन्होंने कहा कि ज्योदा मैं कर सकता हाँ महाराज बल न रुमाल धो के सतनाम मंत्र पढ़के वो बच्चे मरे के मूह पा के ज्योदा हो गया। राजे ने सिख मनना वजीरा समेत अहलकारा समेत प्रवान कर लिया। उस वक्त भाई सौन मल जो किसी की लोड़ होंगी चीज की रुमाल तो आपकी कामना पूरी कर दिया लोगों की क्यों यदि बड़ी प्रभता होगी पहाड़ों के क्योंकि ख्याल हो गया भी कार तो गुरु साहब को भेजती जिनी की लोड़ सी मकान बनने की जे इतने भी ये ठीक है रुमाल की तरह मात है ये रुमाल उठे गया गुरु साहब लै लेंगे मेरे च कोई तरह मात नहीं रहनी इस लालच में लगा रहा। सतगुरु जी ने हुक्मनामा भेजा कि भाई सौन मल कार्य पूरा हो गया जिस वास्ते गए थी तुम हम श्री गोइंदवाल साहब आ जाओ परवाने सुन के कालू टोला करता जी अजे इधर राजा मेनु आने दिता होर कई काम है। सतगुरु जी ने समझ लिया कि अंदर रुमाल का लालच हो गया आप सुधे सुध महाराज जी ने रुमाल उतो खिंच लिया को गुप्त हो गया जब वेखा मेरे को रुमाल है नहीं ते मैं हूं जो लौड़ पेगी कहे न करा मात वरतांगा। उस वे प्यार होकर कहने राजा मैं तो जाना राजा कह लगा महाराज मेनू भी नाल ले चलो सबजा तो बछाण वास्ते हरिपुर वाले राजे ने भी नाल ले आया। लियान तो बाद साहब संगे जी ने दर्शन करने वास्ते बेनती की हजूर ने कहा जो दर्शन करने हैं उन्हें तो साडा हुक्म नहीं है चंचल चित करने वाले के बुलार दईए असि दर्शन जो करने वो सारिया सफेद वस्त्र पहर के राणिया भी आन घुंड कोई ना कढ़े गुरु साहब सारे के पिता भी न्याई होंगे हैं। ये जो वचन किए क्यों प्रवान करा के खाण वाल गया राजे ने दर्शन किए अहलकार वजीरा ने दर्शन किए नमस्कार चीली साहब पकड़ी हुई महाराज खड़ोते है चुवारे साहब दर्शन करके अगे अगे लंघे जाते हैं सारे राणिया ने आके दर्शन किए सारे नंगे चेहरे से सफेद वस्त्र ने सारिया के पहरे हुए हैं। जी नवी एक राणी ब्याई थी सतगुरु का रूप वेख के झट कड़वा कर लिया महाराज साहब के बचन निकल गए कहते कवली किस वास्ते आई थी सतगुरु पिता भी नहीं आई होंगे जो दर्शन नहीं करने उस वे

मेरी कोई बड़ी गल नहीं, हमको सतगुर दई पातशाही जा इतको जा उतको पाही। कह लगे सानू तो सतगुरु जी ने पातशाही दिती है, असी नबाबियां की करनी है, इथे असी बंदगी करदे हां, गुरु की बाणी पढ़दे हां, जिसनु बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, असी तो इथे जिउंदे हां जी, रब की बाणी पढ़दे हां पातशाह, सानू इस गल नाल कोई वास्ता नहीं। ते दूजी गल जे इथे दी गल है ते सतगुरु जी ने संत रब दे कर दी है, जां इतको जां उतको पागी, इथे भी ते उथे भी किते ना किते मिलेगी पातशाही, सानू सतगुरु जी ने पातशाही दिती है, असी नहीं चाहते। सतगुर बचन सिखन जो कही होग बात न खाली जगी। कहन लगे सतगुरु जी ने जेड़ी गल सिखां दे नाल कीती है ना, वह यकीनन होवेगी पातशाही जरूर मिलेगी। सतगुरु जी ने कदे साडे नाल धोखा नहीं कीता, असीं इह किवें चाहुंदे शाड पातशाही किम लहे नबाबी परा अधीन जिस माहे खराबी। कहन लगे असीं पातशाही छड के ते इह किवें हो सकदा है वी असीं तुहाडी इस गल नूं प्रवान कर लईए ते सानूं नबाबी दी लोड़ नहीं है। गुरु के सिखा सुबेक सिंह जी शुक्र है तुसी आयो, सानू इस गल का वास्ता नहीं, पर लेकिन असी नवाबी नहीं चाहते। कुछ एक गल्लां गुरु दरबार विच बैठ के फिर धीरज नाल विचारियां गईयां। तुसी राजनीति नाल राजनीति खेडो, दस कई बार ये बेनती करदा है, जे पैर विच कंडा बज जाए तो कंडिया की दुनिया तो नफरत नहीं कर सकते। हालांकि कंडा दुख दे रहा है क्योंकि कंडे ने ही कंडा कढ़ना है, कंडे तो बिना कंडा भी नहीं कढ़िया जा सकता। कंडा बज गया कंडे ने नफरत नहीं हो सकती। सरकार दुख देंदी है ना, राजनीति कितने दुख देंदी है, ते राजनीति सुख भी दे सकती, सानू वर्तन की जांच आनी चाहिए। सिखा ने उस वेले गल की, कहन लगे इस तरह चंगा नहीं होगा। किन्ना चंगा हो जे आपां इनू सही ढंग नाल वरतीए। उदों गुरु के सिखा ने बैठ के धीरज नाल विचार की, विचार बनी भी हुण नवाबी दईए किनू। उस वेले दरबार विच भाई मनी सिंघोरी बैठे ने, दरबार विच भाई दरबारा सिंघोरी बैठे ने, उन्हां दी विचार होई, पर उन्हां सारे गुरु के सिखा ने जवाब देता। कहन लगे नहीं असी नवाबी नहीं निभा सकांगे। फिर ए भाई कपूर सिंह फैजलपुरिया, इहदा पहला नां है, इहदा पहला नां भाई कपूर सिंह फैजलपुरिया, फैजलापुर दा सी। इह पक्खा चल रहा सी, गुरु के सिखा ने विचार की भी मैं केड़े केड़े सिख नूं पुछांगे, सारी सिख जवाब देणगे, क्योंकि उदो सिख जिहड़ा ना गुरु के घर नाल बहुत प्यार करदा सी, उहदे मन विच अहंकार नहीं सी, उहनूं इस गल दा अहसास सी, सुखी वसै मसकीनियां आपने वार तले, वड्डे वड्डे अहंकारियां नानक गर्भ गले, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन। उन्हों इस गल का एहसास सुनता सी, मैं किसी हाकमी कुर्सी ते नहीं बैठना, मैं ते निम्रता नाल गुरु की सिखी कमाउनी है। तो उस वेले गुरु के सिखा ने विचार करके भाई कपूर सिंह नूं पुछिया नहीं, उन्हों हुक्म कीता भी तेनू दरबार विचों हुक्म है, तेनू नवाबी लेनी पेगी। नवाब कपूर सिंह पक्खा चल रहे सन, उन्हें हाथ जोड़ के एक बेनती की, कहन लगे खालसा जी तुहाडा हुक्म सिर मथे, पर मेरिया नाल दो अरजोईयां ने, मेरिया दो बेनतियां कबूल कर लो। खालसे ने आख्या दसो। कहन लगे पहली बेनती मेरी ए है, तुहाडे चरणां विच हाथ जोड़ के ए जेड़ी नवाबी तुसी देण लगे हो ना, ए गुरु दे चरणां नाल छुआ के दिओ, ए जदों मेरे सिर ते रखी जाए नवाबी, ए सिर दे विच कदे हंकार पैदा ना होवे, इहदे विच गुरु दा प्यार ही पैदा होवे। मैं हंकार नहीं करना चाहता। चलो ये गल मान ली गई भी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरणों नाल छुआ के तुहानू ए नवाबी दिती जाएगी। दूजी की बेनती है, दूजी बेनती उन्होंने ये की भी मैं निकली उम्र तो ही जदों दा मैं गुरु के खालसे विच आके लड़िया, मैं उदों दा ही तुहाडे घोड़ियां दी लिद चुकदा रहा, ते एक काम करियो जे नवाब कपूर सिंह बन के मैं गुरु की सेवा तो ना लुटिया जावां, मैनू सेवा दे विचों सारा कुछ मिलिया, ते कृपा करियो जे मैं घोड़ियां दी लिद
ਉਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

गुरु स्वारियों जी, असीसा बख्शो, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दे विचारां दास तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा कर 1800 तक आप विचार कर सके। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल समझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वह बजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगलों की शानी भरते सन या वक्त के हाकमों की खुशामद करते सन, उही लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उन्हां दे खून विच सी, उन्हां ने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दित्ती। ऐसा भाणा वरतिया, इह सरदार जिहड़े कल किसे कोलों नहीं सन हारदे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। जिहड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे उह जबान दे मिठियां कोल हारन लग पए। खुशामद है ही इहो जिही जिहड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी, होमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह दे इहो जिहे लोगां ने। दूजी गल, भरा मारू जंग, उह मैं तुहाडे नाल पिछले दिनां च सांझी कर बैठा होया, एक दूजे तो एक दूजे दीआं मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाणा, इह उहनां ने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जदों इस तरह दे हालात बन गए ते इन्हां विचों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन उन्हां विचों कुछ चढ़ाई भी कर गए, अगलियां मिसलां दे जिहड़े होर सन जथेदार होर बन गए। उहदे नाल की होया भी जिहड़ी गल अगे सी ना उह ना रही। इत्थों तक मैं बेनती करां, मेरी जबान साथ नहीं दिंदी मैं किवें कहां, पर लेकिन अपना इतिहास है, दो पक्ष आपां नूं लुकाउणे नहीं चाहीदे। यह माड़ा पक्ष है, वह लोग सन जिहड़े वह नशियां दे आदी हो गए, भंग पीण लग पए, शराबां पीण लग पए, जिहड़ी सिक्खी दे विच कदाचित भी कबूल नहीं है उन्हां औगुणां नूं उन्होंने धारण कर लिया, बर्बादी दे राह तुर पए। छोटी जी बेनती विच होर कर दिया, अहमद शाह अब्दाली की गल आप कई बार विचार चुके। 23 अक्टूबर 1772 नूं उमर गया, तैमूर शाह उस 1793 तक जीवदा रहा, पर उन्हें बहुतियां लड़ाइया सिखां नाल नहीं लड़िया। वह एक ही गल कहिंदा सी, मेरे बापू ने लड़के की खट लिया। पर उहदा जिहड़ा पोतरा सी शाहजमान, यह तैमूर शाह का छोटा पुत है, इहने पन विच भावना बनाई। इहदी वृत्ति अपने पिता वर्गी तैमूर शाह वर्गी नहीं है, इहदी वृत्ति अपने दादे वर्गी अहमद शाह अब्दाली वर्गी है। इहने कुछ एक हमले किते, जदों इह तख्त ते बैठिया तेरे हमले किते, 1795 विच हमला किया, 1796 विच हमला किया, 1798 विच हमला किया, 1799 विच 14 जनवरी नूं वापस चला गया। इसे नूं सम्मन बुरज दे विच बैठे नूं महाराजा रणजीत सिंह ने मंगारिया सी, इह उही है तैमूर शाह दा पुत्तर। हुण इह भी जिहड़ा सी उह किनारा कर गया, मुड़के इहनां दे झगड़े आपस विच शुरू हो गए।
ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1793 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ 1799 ਚ ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਾਦੂ ਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਦੇ।

0: जहां खले कल की तर तेर और प्रमोद तर पहुंचे तेर।
1: जदों जंग जित लिया फतेह पा लई जिथे गलगी धर महाराज धीरज धारी सतगुरु धीरज धार के खड़े ने उथे जा पहुंचे सारे।
0: सैदा बेग उतर है तरे गुर के चरण बंद ना करे।
1: सैदा बेग घोड़े तो थले उतरिया आके उन्हें सतगुरु महाराज जी नूं मत्था टेकिया।
0: बोले प्रभु उम्र बरकरार मिले सुखोब इन तकरार।
1: महाराज ने इस तरह का वचन किया कि लंबी उम्र होवे तेरी और तू बड़े सोहने समय ते बड़ा चंगा मौका सी जदों तू आके सानू मिलिया है।
0: सैदा बेग समझ तू बेग आहो कंधारी बंद तेग।
1: महाराज कहन लगे सैदा बेग तू बेग तो भाव छेती इस गल नूं समझ लै हुण याद कर लै बीतिया समा अपना उन्हां जन्मां दे विच तू कंधारी सैं ते तेग बंधा हुंदा सी सोहणी तेग चंगा लोहा लिया के कुटना मुठे बनाउणे सोहणे शस्त्र बंधा हुंदा।
0: पूरब गुरु नानक तुम मिले सेवा करी होती तब भले।
1: जदों असीं पहलां गुरु नानक देव जी दे जामे दे विच सां

0: महाराज जां तां हुण मैं अपनी स्त्री नूं प्राप्त करांगा जां फिर तुहाडी ड्यूटी दे अगे सड़ मरांगा इस करके मैनू तां मेरी स्त्री लिया के दो जी।
1: जीवन धर्म नहीं अब मेरा,
0: क्योंकि हुण मेरा जिउणा धर्म नहीं है मरना ही धर्म है, क्योंकि मेरे को मेरी इज्जत खो के लै गए।
1: तुम बिन जतन नहीं को हेरा,
0: तुहाडे तो बिना होर कोई जतन नहीं होर कोई मददगार नहीं है साडा।
1: सुन कलगी तर धीरज दीन,
0: कलगियां वाले पातशाह ने फिर धीरज दिता।
1: चलो ना दुख चिंता करहीन,
0: महाराज कहने जलन की कोई लोड़ नहीं है, ये दुख नू नाश कर। इत्थे तां कोई बड़िया बड़िया गल्लां हो जांदियां, तू ए कहड़ी गल कर दिती कि उथे स्त्री नहीं आ सकदे कि असी इस करके असी लै के आवांगे।
1: करै जतन तो दारा हेत,
0: तेरी स्त्री वास्ते जतन करांगे भाई, सारियां धीआं भैणां सांझियां हुंदियां ने।
1: क्यों क्यों कर लैंदे नकेत,
0: क्यों क्यों भी करके जिवें किवें करके असी इत्थे लिया के देवांगे तेरी स्त्री।
1: तिस छिन पुत्र विशाल बुलायो, सुन तो तुमको पित डिग आयो।
0: महाराज ने होर नहीं किसी नूं चुनिया इस काम लई, सतगुरु जी ने आवाज दित्ती सेवादार नूं, कहिंदे इधर आओ भाई बाबा अजीत सिंह जी नूं लै के आओ, जाके उन्हां दी सेवा लाउणे इस काम दे वास्ते।
1: तरन अवस्था जिस तन सो है,
0: बड़ी जवान अवस्था है, युवा अवस्था है, लंबा कद जिन्हां दा।
1: जन अर्जुन सुत अभिमन्यु ओ है,
0: मन आओ प्रमाण दिता जिवें अर्जुन दा पुत्र अभिमन्यु सी ना, इस प्रकार सुंदर सोहणे सन बाबा अजीत सिंह जी।
1: खरज खरज सिपर जे अंग लगाए,
0: सोहणी ढाल ते श्री साहब जिन्हां ने अपने अंगां ते सजाई होई।
1: अदक सपुत सुंदरी जाए,
0: आदा सुंदर कौर ने सोहणे सपुत्र नूं इह जन्म दित्ता।
1: सकल कुडंब मोद के दायक,
0: सारे परिवार नूं खुशियां दे देण वाले।
1: मित्रन सुख दे शत्रुन गल कायक,
0: अपने मित्रां नूं सुख देण वाले बाबा अजीत सिंह जी ते दुश्मनां नूं दुख देण वाले।
1: चपल बिलो चिनयुत विस्तारा,
0: बहुत चंचल नेत्र चौड़ियां चौड़ियां सुंदर अखां जिन्हां दियां, बड़ा जिन्हां दे विच एकाग्रता राष्ट्र काओ लज्जा दा जहाज ने जिहड़ियां, ऐसे सुंदर नेत्रां वाले बाबा जी आ गए।
1: बिच के गुण अर तन अनुहारा,
0: इको ही सरूप है, जे कठिया नूं खड़े कर दईए थोड़ा ही फर्क पैंदा, उम्र दा ही फर्क पैंदा, इको जिहा कवि जी कहिंदे सरूप पिता जी वर्गे ही देखण नूं लगदे हन।
1: सभा मझार गुरु ठिग आयो, उडगन रब सत्सम दरसायो।
0: सभा दे विच बाबा अजीत सिंह जी चल के आए, संगत तां मानो जिवें तारे हुंदे ने, सतगुरु जी जिवें सूरज हन, बाबा अजीत सिंह जी ओं लगदे ने जिवें चंद्रमा चढ़ आया हुंदा।
1: पिता गुरु के पग कर नमो,
0: आके पिता गुरु जी चरणा ते प्यार सत्कार नाल मत्था टेकिया।
1: सादर बैठ गयो ते समो,
0: मते बुला के उस वक्त सहत आदर दे सज गए।
1: सर्व सभा सद बंधन कीन,
0: सारी जिनी सभा बैठी है उन्हां सारयां ने भी बाबा जी नूं फतेह बुला दित्ती है।
1: देख देख दुश्मन सुलीन,
0: तो देख देख सारे सबना ने बाबा जी नूं हथ जोड़े ने, क्योंकि बाबा जी बड़े सत्कारयोग ने, इस करके मत्था तां सतगुरां नूं टेकना है, फतेह बाबा जी ने बुलाउणी है, इस करके आपां वी बुला लई बाबा जी नूं फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: इक सपूत को हुक्म बखाना, लियो सिंह संग करो पियाना।
0: महाराज सच्चे पातशाह ने अपने होनहार साहिबजादे नूं वचन कीता, पुत्र जी आ ब्राह्मण है देवदास, इहदी सुपत्नी नूं खोह के लै गया उथों वाला बसी पठाने वाला जाबर खान, ते तुसीं आ सिंह लै जाओ जिन्ने चाहीदे। बोलो भाई वीर सिंह जी ने 25 सिंह लिखे ने, कहिंदे 25 सिंह महाराज ने दिते, चुणवें चुणवें योधे लै ले बाबा जी ने नाल। उस वक्त फिर शाम दा वक्त सी, राते रात ही काम करके सवेर नूं बाबा जी वापस मुड़े आए सी।
1: बली तुरंगम पर शुभ जीन,
0: बहुत सुंदर तकड़ा घोड़ा महाराज ने बख्शिश कीता।
1: खर खपरे धर कै धन पीन,
0: तिखे तिखे तीर सोहणियां दे पत्थे भर ले उस वक्त।
1: दिज को दुख छीनी खल दारा,
0: ओ जिहड़ा ब्राह्मण सीगा बड़ा दुख सी उहनूं, क्योंकि उहदी इस्त्री खो लई सी।
1: दोही दीन दीन लख मारा,
0: क्योंकि गरीब जान के उन्हें मारिया, इन्हें इत्थे आके अपने गुरु घर दे मूहरे दोही दित्ती है, फरियाद कीती है आके।
1: बसी بسی ایک تس میں بسے کر علی آئے خوشی ات ہسے.
0: ایک بسی ہے بسی پٹھانا جہی پرلے پاسے ہوشیارپور ضلع چ پی ہے اتے دے بسن والے جہے پٹھان نے اتے یہ دارا جا کے استری بسی اپاو لے کے گئے نے اتے جا کے تسی حملہ کر کے لے کے آنی ہے
1: کر انیائے خوشی.

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल विदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल विदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हूं चंगिया निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जा देना या मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई ओ सोहनी काठी पाओ ते ओदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ए तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कवका दे कर लियायो तहां प्रभु

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश हुंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रब आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने, माता जी

0: इंद्र भाव पहाड़ी राजा है, शैल तो भाव पहाड़, इंद्र तो भाव राजा, ये सारे राजा विचों इन्हां च वड्डा है। उन्हें इस तरह कहा कि तुसी सारे जिहड़े गिरंदा तो भाव गिर पहाड़, इंदा भाव फिर राजा, तुसी जिन्ने पहाड़ी राजे हो, ये मेरी गल तुसी ध्यान नाल सुनो।
1: क्यों ना भविखत बात विचारो, सिर पर शत्रु परवल विचारो।
0: तुसी आउण वाले समय की फिक्र क्यों नहीं करते हो, अपने सिर दे उत्ते इन्ना प्रबल शत्रु जो है, दसवें पातशाह वाल इशारा करके कहण लगा कि इन्ने प्रबल शत्रु आपां नूं आउण वाले समय विच मार दे।

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्हों के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम।
0: इन्होंने कई बारी अपने नाल जंग कीता है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने, यह सारे इलाके कई बारी इन्होंने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे।
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे, ये इन्होंने बहुत सारे जंग दे

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नास करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जन दी, दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर पेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مرمر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने?
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने?
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा?
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा?
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सत्र को हाथ कर कैसे?
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार?
1: राज पाए किम कहिए तैसे?
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए हो राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है। ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा?
1: वधे तेज किम लहे धरने?
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा, किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने?
1: ठहरे राज कौन कर करने?
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा?
1: बहुतन की किरत अलप करें किम?
0: ए बहुतियां दी किरत, बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है, ए हजार बंदा किवें कर सकता है? मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है?
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम?
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है?
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज?
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा बड़ा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू?
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा?
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा?
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा?
1: हान लाभ जाने इस बेरा?
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा, किस तरह राज करेगा?
1: वरते वरतारा जग जथा?
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च।
1: श्री मुख सुंदर ती कह तथा?
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए?
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए?
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह दी हवा चल पेगी, अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल?
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल। हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाएगो दो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल। इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी, सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल। उस सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा, जंग जितेगा, अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल?
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार?
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार, जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा, री छड़ देना खा, लक्ष्मी तो लल्ला खाल, ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुरचरणा समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे ते नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, यह पहाड़िया नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरन सो बरतै ऐसी सुनो सिख मन बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: होर जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रहा ही नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: प्रसाद होर कितों नहीं छकना, जिन्होंने हुण गुरु का अमृत छकया होया वो सिर्फ कड़ा प्रसाद ही छकण।
1: बिन बूजे देवन को जजै मैं छोड़ा सो सिख मम तजै।
0: हुण जिहड़ा बिना समझे एवें देई जावे जां लई जावे, महाराज कहिंदे मैं उहनूं छड्या वो मेरा सिख नहीं है। जिहड़ा थां थां दे उत्ते एवें खाई जांदा, थां थां दे उत्ते अपनी मर्यादा बिगाड़दा फिरदा, ओ मेरा सिख नहीं, मैं उन्हूं छड़ दिता, ये जान लो।
1: मेरा सिख जो तीर्थ जावै दे अतिथि को भोग भुगावै।
0: हुण सिख हो गए तीर्थां ते भी नहीं जाना, तीर्थ ते नहीं जाना, इत्थे लियाउने तीर्थां नूं। सुनिया अठ सठ का इशनान, कई कहिंदे ने मैं तीर्थ ते नहाउण जाना, हुक्म नहीं नहाया आपां नूं। एवें आपां हुण दूजियां दी रीस करिए, यह आदत नहीं हुंदी चंगी। उन्हां दा है ठीक है, जिहदा कोई है उहदा है। साडे तीर्थ ने पावन पवित्र श्री अमृतसर साहब है, पावन पवित्र स्थान ने जिहड़े साडे, उन्हां दे दर्शन इशनान करने है। बाकी तीर्थां ते जाना फिर अतिथि नूं भोग भुगाउणा एवें खाम खां, इहियां चीजां ना करे।
1: दी जो दान पुरब को मान गुर विश्वासी गुरु स्थान।
0: हां कहिंदे करन वाला भी थोनू कम दस दिंदे आ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੇਬ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁਰਬ ਕੋ ਮਾਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਓ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਲੰਗਰ ਚ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਾਓ, ਚੌਲ ਪਾਓ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ

0: सुपते निसमें सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सीदे कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आवे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क है, किन्ना किन्ना ज्ञान है। कई प्रश्न करे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जा नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गज के आ

0: सुपती नित मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: चीर के उलंघ के साज उज मुक्ति प्राप्त कर लेगा। चारा मुक्तियां विचों सयुज मुक्ति है जेड़ी श्रोमणी।
1: अपनी नारी सच ब्रित खाज अखाजी ब्रित।
0: अपनी नार ते संतोख सच दी विचार या सच दा

0: जी दोहिरा एक दिन गुर के सभा में श्री अर्जुन की रहत।
1: एक दिन का वचन है कि महाराज दसवें पातशाह ने भरी संगत दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने जो रहत मर्यादा भाव जो श्री सुखमनी साहब दे मर्यादावां दा वर्णन किया है ओ सारियां संगतां नूं सुनाया है।
0: कल महिमा सुखमनी बहु जप जी महिमा महत।
1: कलयुग दे समें दे विच श्री सुखमनी साहब दी महिमा बहुत ज्यादा है अते दे नाल नाल जप जी महिमा महत जप जी साहब दी महिमा जड़ी है ये भी बहुत ज्यादा है।
0: जिनके सेवन ते मिटे विघ्न तलक संदाए।
1: जिन्हां दे पढ़न नाल बाणी पढ़दिआं फिर सुननी कमाउणी बाणी पढ़दिआं बहुत सारी मन दी जिहड़ी कालख है अथवा कलख जिहड़े पाप ने साडे कीते होए कई प्रकार दे विघ्न ने